0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Liscott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: है,
1: आज सोमवार है,
0: अरे बाबा है,
1: तुमको मुझसे प्यार है,
0: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: In a voice, Liscott Agnell Radio.

0: Escott Agnell Radio.
1: Inner Voice. Escott Agnell Radio.

Miskot Agnel Radio. Inner Voice. Miskot Agnel Radio.

0: voice. Niscot Agnel Radio.
1: Inner voice. Niscot Agnel Radio.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट

0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।

0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और

0: यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

0: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग

0: लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
1: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
2: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
0: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
1: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन

0: हेल्दी, सेफ, इम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित।
4: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
5: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है।
3: Scott Agnell Radio.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो।
5: मैं हूं एनोश।
6: और मैं हूं जेफरी।
5: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
6: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
5: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
6: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
5: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: वो जेफरी, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: सुन, अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता दे फ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो

0: ताले तक धमे तक ताले तक धमे तक धला अंग तक धके तक ताले के नक तक नक तक धमे तक नक नक धमे तक नक नक धमे तक नक नक जम तारे ता जग तारे ता जाने जाने को तारे ता को तारे के ते ताले तारे ता जग तारे ता जाने जाने को तारे ता को तारे के ते जम तारे जग तारे जग नक नक
1: पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: अच्छा अनुष, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये 7वीं 8वीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जाम्पल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे कहीं ज्यादा अटपटा और चटाकेदार स्ट्रीट फूड है भारत की गलियों में। मरिन

0: जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्क शेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्क शेक। मजेदार क्रीमी मिल्क शेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: मेरा नाम गार्गी है

0: भारत के स्ट्रीट फूड में, आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो मर्जी आपकी है, आप जो भी बताएं।
1: नाजिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी, लाल चटनी, लाल चटनी चलो मीठी है वहां तक तो चलता है, लेकिन मीठा

0: कचौड़ी समोसा खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्टिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन एक बाइट लेते ही उसको पूरा फेंकना पड़ा।
1: अरे बाप रे। धन्यवाद गार्गी आपके कॉल के लिए। ऐसी ही कई अनोखी वन इन अ मिलियन डेडली फूड कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आऊंगा सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नाडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
2: मंजिले अनलिमिटेड।

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय। इसके बारे में जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकास।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं वो लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे
4: Niscot got talent.
5: जाबेस डिकास्ट्रो

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय। And we will meet you in the next program. Aap sun rahe the In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।

इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया उस जगह पर, तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पर पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद, कुछ देर इंतजार करने के बाद, जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई

0: ते सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
1: In a voice, radio.
0: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी मां के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे मां का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की कदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
2: इंडिया दिल से।
1: इन अ वॉइस, मिस कॉट एग्नेल रेडियो।

0: Niscott Agnel Radio.
1: In a voice, Niscott Agnel Radio.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: Niscott Agnell Radio.
1: Inner Voice, Niscott Agnell Radio.
2: India, Dil Se.
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
2: दिल से
3: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकिया यहां पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लग गए और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे हैं, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है? वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
0: Inner Voice Radio.
3: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव है। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण, यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्तानें मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
2: इंडिया दिल से।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. Aap sun rahe the In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।

0: मैं हूँ सुजीत।
1: और मैं हूँ अर्पित।
2: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different contexts, common aspirations, advancing health and well-being for all young people in the Americas.

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है

0: सपने एक जैसे हैं, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day,
2: and we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Miss Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,

0: and I am your host, Austin.
1: मैं हूं सुजीत
2: और मैं हूं अर्पित
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद
3: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
1: डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।

0: कंफर्ट और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित।
2: And we wish you all happy International Youth Day. And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि

0: यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें। साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
2: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिका।
3: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Miss Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड

0: गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिले।

0: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकास।
3: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय। अमेरिकास।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, इम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. Aap sun rahe the In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन

0: सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क,

0: मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
1: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
2: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
0: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, इम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: and we wish you all happy International Youth Day.
0: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
5: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
3: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
0: और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल Happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो. गुड बाय.
4: हेलो मिस स्कॉट.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं। और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
1: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
2: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है। साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है। और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
3: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो।

1946 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम

0: सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटी

0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करे, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करे, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करे और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करे।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है।

0: हेल्दी कम्युनिटीज़ बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें। साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान

0: हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित
4: एंड विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और

0: सिलियन सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy international youth day,
2: and we will meet you in the next program. Aap sun rahe the In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ

0: और भी ज्यादा होता है।
1: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
2: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
0: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और

0: सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
1: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
2: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल

0: पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस एडवांस।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकास।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।